सुप्रभात। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 और 55 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: प्रत्येक मनुष्य की जीवन यात्रा में चार अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में हमारे जीवन की या किसी भी युवा की युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। युवा किसी भी समाज का भविष्य होते हैं और युवावस्था की युवा शक्ति किसी भी समाज की रीढ़ होती है। प्रत्येक युवाओं को भविष्य का प्रतिनिधि माना जाता है। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। एक युवा का प्रथम दायित्व बनता है कि वह अपने राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे, अपने ज्ञान, विवेक तथा सामर्थ्य का लाभ समाज को प्रदान करे। ऊर्जा से परिपूर्ण अपनी युवावस्था को देश की प्रगति के लिए समर्पित करें। किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति समाज को तभी सही दिशा में ले जा सकती है जब वह स्वयं सही दिशा की ओर अग्रसर हो। युवाओं में धैर्य की कमी को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भी अनुचित है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए युवाओं के मन में थोड़ी बेचैनी और अधीरता का होना भी आवश्यक है, तभी वे जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। कई ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में गलतियों से सीखने और स्वयं को सुधारने की क्षमता भी है। हमारे समाज में किसी भी युवा की युवावस्था की आयु 21 से 35 वर्ष तक मानी जाती है। युवावस्था सबके जीवन में आती है और मात्र एक बार आती है। जोश और ऊर्जा भरे बड़े सपने को संजोने के लिए युवावस्था हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है। यही समय है जब हम अपने समग्र विकास के लिए अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं। युवावस्था जीवन की प्रकृति प्रदत्त वह अवधि है जो शक्ति और क्षमता के साथ आगे बढ़ती है, परंतु जीवन पर्यंत शारीरिक और मानसिक रूप से युवा बने रहना या युवावस्था को बनाए रखना एक चुनौती है। आप हम सभी जिस वर्तमान युग में रहते हैं, जहां दिन प्रतिदिन तेजी से बदलती जीवन शैली में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मन से युवा और तन से युवावस्था में बने रहने की चुनौती को स्वीकार

0: करना अति महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारे जीवन के हर दिन के साथ साथ हमारी उम्र तो बढ़ती ही जाती है। यद्यपि हमारे आसपास की दुनिया की तेज गति हमारी उम्र को तेजी से बढ़ाती है, लेकिन यदि हम अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति से अपनी युवा शक्ति को जागृत रखेंगे, तभी हम आज की भागती दौड़ती दुनिया में खुशनुमा जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप अपनी बढ़ती उम्र में भी सदैव ऐसे जीवन की कल्पना करें जो युवा सोच और जोश से भरा हो। आप स्वयं को हमेशा उन परिस्थितियों में क्षणों या पलों में रखकर जीवन जिए जैसे कि आप अपनी युवावस्था में रहे थे। क्योंकि हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हमारे मन मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं तथा संरक्षित रहती हैं, अतः अपनी सोच सदा सकारात्मक रखें। नकारात्मक और सकारात्मक सोच का सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। कहते भी हैं, मन युवा तो तन युवा। युवावस्था सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिकता की भी होती है। यदि हम मन से सृजनात्मक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो बढ़ती उम्र में भी हम युवावस्था का ही संचालन करते हैं। युवावस्था ईश्वर का अनमोल वरदान है, इसे धरोहर समझकर सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति के साथ सदा सहयोग करें, अर्थात नियमित योगाभ्यास तथा नियमित दिनचर्या को अपनी बढ़ती उम्र का हिस्सा बना लें। आहार सात्विक और शुद्ध लें। घर में माता पिता को अपने बच्चों के साथ हम उम्र की तरह, अर्थात पिता को पुत्र से तथा माता को पुत्री से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और उनके साथ अपने युवावस्था में बिताए यादगार पलों को साझा करते रहना चाहिए। अपने करियर की प्रगति पर ध्यान देने के साथ साथ आज के युवा को यह भी समझना होगा कि उन्हें समाज को भी कुछ लौटाना है। वर्तमान में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे समाज जूझ रहा है। यह सच है कि हमारा जीवन और परिस्थितियां अपने हिसाब से चलती हैं, फिर भी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से युवा बेशक समय न निकाल पाए, लेकिन वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं को जागरूक तो रख ही सकते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। विषय है कृषि रसायन का सुरक्षित प्रयोग।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जब आपके खेत में कोई कीड़ा लग जाता है, रोग हो जाता है या अन्य तरह की गड़बड़ी हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे से उत्पादन अच्छा नहीं होता है, तो हम आपको कृषि रसायनों के प्रयोग की बात करते हैं। यहाँ तक कि बीज उपचार के लिए, अन्न भंडारण के लिए भी कृषि रसायनों का उपयोग कभी कभी किया जाता है। आप कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं, रोगनाशियों का प्रयोग करते हैं, आप फफूदनाशियों का प्रयोग करते हैं, तो इन कीटनाशियों के प्रयोग से, फफूदनाशियों के प्रयोग से, रोगनाशियों के प्रयोग से या खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से किस तरह से आपकी फसल को, आपको, आपके पर्यावरण को हानि हो रही है, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। कृषि रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के द्वारा काफ़ी हद तक हम पर्यावरण के को होने वाली हानि को, अपने पैसे को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिजूल खर्ची जो होती है खाद पर, कीटनाशियों पर या रोगनाशियों पर, उसे हम बचा सकते हैं। यदि किसी भी फसल पर 5% से ज़्यादा नुकसान हो रहा हो कीड़ों के द्वारा या रोगों के द्वारा, तभी आप कीटनाशियों का या रोगनाशियों का प्रयोग करें। जब भी किसी रोगनाशी या कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसके द्वारा किसी हमारे अन्य जो लाभकारी जीव हैं, लाभकारी कीड़े हैं, जो कि खेती में, पर्यावरण में लाभ पहुंचाते हैं, उनको इससे क्षति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि खेत में ज़्यादा मधुमक्खियाँ हों, उस समय आप कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें। अच्छा ये रहता है कि शाम के समय कीटनाशियों का प्रयोग करें ताकि अन्य जो जीव हैं या मधुमक्खियाँ हैं वो खेत में उपस्थित नहीं रहें। जब आप कीटनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं तो कपड़े बिल्कुल चुस्त रहने चाहिए, आँखों पर चश्मा लगा लें, मुंह पर आप कोई रुमाल या कपड़ा बांध लें, यदि मास्क मिल जाए तो मास्क भी मुंह पर लगा लें, और जिस तरफ हवा चल रही हो उसकी विपरीत दिशा में खड़े हो करके आप कीटनाशियों का प्रयोग खेत में नहीं करें। अन्यथा कीटनाशी

0: दवा जो है, चाहे वो आप धूल के रूप में बुरकाव कर रहे हैं या घोल रूप में छिड़काव कर रहे हैं, आपके शरीर पर उसका प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। जब भी आप कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें तो आप हाथ में भी दस्ताने जरूर पहन लें। इसके बाद बात आती है कि सांद्रता का ध्यान आप रखें, जैसे जितने लीटर पानी में जितने ग्राम या जितनी मिलीग्राम दवा जो घोलनी है उतने ही का घोल बनावें। यदि अधिक का आप घोल बनाते हैं तो आपको नुकसान होता है, उससे पौधे को भी नुकसान होता है। उसी तरह से जब खाद तथा उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करें, क्योंकि आप बिना मिट्टी जांच कराए उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, पौधे को भी वो पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पोषक तत्व तो पहले ही से आपके खेत में उपलब्ध हैं, और इसमें आपका पैसा बर्बाद होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, धीरे धीरे मिट्टी आपकी बंजर होती जाती है और उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी तरह से कीटनाशी दवा के प्रयोग करने के बाद आपको चक्कर आ रहा है, मिचली आ रही है या मन अकबक कर रहा है, मन में किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो आप कीटनाशक दवाओं के प्रयोग को तुरंत ही बंद कर दें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। सबसे जरूरी ये होता है कि जब भी आप कीटनाशक दवा कोई खरीदें तो उस पर देख लें कि लाल रंग का निशान बना हुआ है या हरे रंग का बना हुआ है या पीले रंग का बना हुआ है, उससे ही आपको ये पता चलेगा कि ये कीटनाशक कितना जहरीला है और उसके अनुसार ही आप उसे प्रयोग करें, सावधानी बरतें। उसके बाद बात आती है कि जिस डिब्बे में कीटनाशक है जब उसका आप प्रयोग कर लिए तो डिब्बे का क्या करेंगे, तो डिब्बे को जो है वो सुरक्षित उसका डिस्पोजल करेंगे, और कीटनाशक दवाओं को यदि आप घर में रखते हैं तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें और जहां
1: कृषि रसायन का सुरक्षित प्रयोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। सुबह के 6 बजने के हैं और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय

0: के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है कुछ भजन। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। और विश्वास में इतनी शक्ति है कि इससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।

ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में ही निवास करते हैं। तो ईश्वर हर रूप में आपकी मदद करने आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ढूंढना नहीं, पहचानना भी।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। विषय है कमर दर्द में फिजियोथेरेपी का महत्व। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रवि प्रकाश और इनसे बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद।
1: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज हम बात करेंगे कमर दर्द में फिजियोथेरेपी का महत्व, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पटना के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रवि प्रकाश। सबसे पहले कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है।
2: आपको भी बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए, फिजियोथेरेपी केवल दर्द करने का उपचार नहीं है सर, बल्कि दर्द के कारण को पहचान कर उसे दूर करने की वैज्ञानिक पद्धति है। सबसे पहले मरीज की पूरी जाँच की जाती है, उसके बाद उसकी आवश्यकता के अनुसार विशेष एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को मजबूत करने वाला एक्सरसाइज और आधुनिक फिजियोथेरेपी तकनीक की सहायता से उपचार किया जाता है। रेगुलर फिजियोथेरेपी से न केवल दर्द कम होता है और बल्कि रीढ़ की हड्डी और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है। शरीर की सही मुद्रा यानी पोस्चर सुधारना और भविष्य में दोबारा दर्द होने की संभावना कभी कम हो जाती है। अब आइए हम बात करेंगे कमर दर्द से बचने के लिए। जैसा अब आपने बात किया था सर, यदि आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो मैं बात करूंगा हर एक दो घंटे में कम से कम 2 से 3 मिनट अवश्य उठे और थोड़ा चले, और भारी सामान उठाने समय कमर को जैक में झुकाए, थोड़ा सा घुटना पर बैठ जाए और उससे फिर उसका अपना वजन को संतुलित रखे, नियमित एक्सरसाइज करे और बैठने तथा सोने की सही आदत अपनाए। एक बात और याद रखिए, यदि कमर दर्द के साथ पैरों में जनाहट, सुनपन, कमजोरी या पेशाब या शौच नियंत्रण में कमी आ जैसी समस्या हो तो इसे समान दर्द समझ कर अनदेखा न करे सर। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। हमारा शरीर हमें समय समय पर संकेत देता है, उन संकेत को अनदेखा करना समझदारी नहीं है। समय पर सही सलाह और सही उपचार आपके लंबे समय और स्वस्थ सक्रिय बनाए रखता है।
1: जी तो सर, यह इसमें एक फिजियोथेरेपी कैसे करें, कब करें, कहां करें, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए ताकि कमर दर्द से लाभ।
2: आज हम बात करेंगे कमर दर्द की। एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में केवल बुजुर्ग तक सीमित नहीं है। आज युवा, गृहिणी, किसान, मजदूर, ऑफिस में काम करने वाले लोग और यहाँ तक कि विद्यार्थी भी कमर दर्द से परेशान हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लंबे समय तक लगातार बैठे रहना
1: जी,
2: घंटों मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करना, मोटापा, व्यायाम की कमी और कभी कभी तनाव भी दर्द होने के अधिकांश लोग से कमर दर्द से परेशान होते हैं।
1: सर, आपने एक बात कहा कि लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, तो तकनीक आज हमारी डिमांड है, जरूरत है, इसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन इसके साथ हम कैसे सामंजस्य बिठाएं ताकि ये कमर दर्द की समस्या ना आए।
2: देखिए, कमर दर्द की समस्या आप अगर जो लोग ऑफिस में बैठकर के काम करते हैं एक दो घंटे, तो मैं उनको ये मैं बोलूंगा कि एक दो घंटे में कम से कम तो 2 से 3 मिनट तक इधर उधर घूम ले ले, घूम मतलब कि टहल ले और कमर को थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा इधर उधर वॉक करे, तो

0: से आपका जो कमर की मांसपेशियां है वो कुछ लूज होगी और
1: वाह,
0: आपको आराम भी
1: मतलब
0: मिलेगा।
1: काम के साथ साथ नियमित अंतराल पर आप थोड़ा सा घूम फिर लिया करें। जी, आगे आप कुछ बता रहे थे।
0: और इसके बाद की आवश्यकता के अनुसार विशेष एक्सरसाइज जैसे एक स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज, और जो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है
1: जी
0: तो उसके बाद आप फिजियोथेरेपी के क्लिनिक में भी जा सकते हैं, और उसका जो कौन सा मसल जो कमज़ोर है उसके अनुसार आप अच्छा से एक्सरसाइज उनसे सीख लीजिए और एक्सरसाइज आपको घर पर
1: जी
0: कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी कैसी पद्धति है और दर्द निवारण में, और विशेष रूप से कमर दर्द निवारण में कैसे ये काम करती है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: देखिए, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज मतलब कि जो हमारा जो एक्सरसाइज है, और जो हर एक मसल्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है,
1: जी
0: अगर वो एक्सरसाइज कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आपको आराम मिलेगी, और कोई एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी से बात कर लीजिए तो वो ज़्यादा आराम मिलेगी। और जैसे आपके मतलब कि मैं माध्यम से मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, कमर में दर्द है तो वो ज़्यादा देर बैठ करके काम ना करें
1: जी
0: और इधर उधर घूम ले, और पेट के बल लेट करके एक नौ का टाइप का एक्सरसाइज आती है,
1: जी
0: मतलब कि
1: नौकासन
0: दोनों,
1: जिसको
0: हाँ
1: बोलते
0: नौकासन
1: हैं।
0: बोलते हैं, वो करें तो आपको इसमें बहुत आराम मिलेगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी कुछ जानकारी कमर दर्द में फिजियोथेरेपी का महत्व विषय पर, और हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर रवि प्रकाश। सर, कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: कमर दर्द में फिजियोथेरेपी का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर रवि प्रकाश से बातचीत कर रहे थे हरेंद्र आजाद। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय गायन। डॉक्टर नीरा चौधरी से आप सुनेंगे राग यमन।

कर 10 मिनट पर प्रस्तुत करेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। 10:30 पर सुबह आप सुन सकते हैं अंग्रेजी वार्ता और सुबह 10:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ गीत अनुपमा शरण की आवाज।

दोपहर 12 बजे का समय है, कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ मैथिली लोकगीत। कलाकार होंगे पंकज कुमार पांडे और स्नेहा वर्मा। सुरों का सफर इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 में। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, आज के कार्यक्रम आधारित है सुप्रसिद्ध गायक, गजल गायक जगजीत सिंह पर।

सांध्यकालीन सभा में आप सुनेंगे शाम 4:30 पर कार्यक्रम युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर।

और शाम 7 बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ भजन। कलाकार होंगे सीताराम सिंह।

सोम वासरीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। कार्यक्रम में आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन डॉक्टर नीरा चौधरी से। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा। पहले सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी समाचार। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निन्दां कुर्वता विदेशमन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादश भारतीय नागरिकेषु दश नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई।

0: तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, आज है तारीख 13 जुलाई और आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में क्यों है खास, तो चलिए इस पर बात करें। सबसे पहले साल 1905 की। बंगाल विभाजन के समय आज ही के दिन कलकत्ता के एक साप्ताहिक अखबार संजीवनी ने पहली बार ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सुझाव दिया था, यानी स्वदेशी आंदोलन की वो चिंगारी जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को नया मोड़ दिया, उसकी शुरुआत आज ही हुई थी। वहीं साल 1929 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ दास ने लाहौर जेल में अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। श्रोताओं, आज मनाया जाता है विश्व रॉक दिवस। इस दिन का उद्देश्य संगीत की इस लोकप्रिय विधा और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को सम्मान देना है। साथ ही 13 जुलाई को मनाया जाता है जम्मू कश्मीर शहीद दिवस। ये दिन 1931 में शहीद हुए लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। इतिहास की कुछ और बातों पर नजर डालें तो आज ही के दिन यानी 13 जुलाई 1930 में उरुग्वे में पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई थी। 1973 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का जन्म हुआ, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों और बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वहीं वर्ष 1934 में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म हुआ, जो अपने साहित्य और सामाजिक सरोकारों के लिए जानी जाती हैं।

श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हमें योग और नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, फिटनेस का अर्थ केवल वजन कम करना नहीं है, बल्कि फिटनेस का मतलब है शरीर का स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान होना। नियमित रूप से टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या किसी भी खेल में भाग लेना, यह हमारे हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। विशेषज्ञों की माने तो रोजाना कम से कम 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम कई बीमारियों की जोखिम को कम कर सकता है। साथ ही योग भी हम अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। योग हमारे शरीर को केवल लचीला बनाने में माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन भी स्थापित करता है। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है और प्रतिदिन कुछ समय अगर योगासन, प्राणायाम और ध्यान के लिए आप समय निकालें तो तनाव से आपको मुक्ति हो सकती है मिल सकती है। तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो योग के कुछ सरल अभ्यास जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन और अनुलोम विलोम, ये सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक माने जाते हैं और आप आसानी से इसे शुरू कर सकते हैं। तो श्रोताओं, याद रखिए, स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हर रोज हम थोड़ा समय फिटनेस के लिए, योग के लिए निकालें, तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और हम ऊर्जावान भी बने रहेंगे।

इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक लोक संगीत। कलाकार हैं मोहम्मद खलील और साथी।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक लोक संगीत। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में प्रस्तुत है शास्त्रीय गायन। डॉक्टर नीरा चौधरी से सुनेंगे राग भूपकली। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं शिवम मिश्रा और सारंगी पर हैं रोशन अली। लीजिए सुनिए राग भूपकली। पहले प्रस्तुत है विलंबित झप ताल में निबद्ध और फिर सुनेंगे द्रुत तीन ताल में निबद्ध।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरा चौधरी से राग भूपकली। तबले पर इनका साथ दे रहे थे शिवम मिश्रा और सारंगी पर थे रोशन अली।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
5: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री

0: गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा

0: पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विमिल्डन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज़्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकिद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबियात के 56वें बैन अलाक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबियात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के ऋषि गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज ने की जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीकारों का पहला बैन अलाक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बावक़ार आलमी फोरम में जिसकी मेज़बानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है आला शख्सियतें शिरकत करेंगी जिसमें

0: वज़ीर-आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वज़ीर-आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनूई ज़हानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे, जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी, जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज दोपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MPTech ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनक्द किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमीकंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हर एक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमात शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: सियाहत और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये खिदमात मुश्तरका तौर पर शुरू की जाएंगी। अवाम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रियासती सरकार की तरफ से माली इमदाद के साथ सयाह रियायती किरायों पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियासती सरकार फी टिकट पर 15,422 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। हेलीकॉप्टर सियाहत खिदमात 18 जुलाई को शुरू होंगी, जो हर हफ्ते और इतवार के रोज फराहम की जाएंगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजुर्बात किए हैं। पहले तजुर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है, जो अमले के तहफ्फुज की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूर दराज मकामात पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के अमले के अलावा तजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत

को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताज़ा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेशनज़र किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि अबनाए हुरमुज तजारती जहाज़ों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी महाजराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नतीजे के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को

0: और आलमी नतीजे के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेरे इलाज हैं। ये आग बार में निस्फ शब के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनोरिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में ये एक मशहूर रेस्तरां है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज्वेरोव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सवयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाई अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कानून मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियावेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती के लिए मिलेगी छूट। और मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 8 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से पहले चरण में पटना, पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले के मां मुंडेश्वरी और नालंदा के राजगीर को शामिल किया गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपये, पटना राजगीर के लिए 4000 रुपये, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपये और पटना कैमूर के लिए 6000 रुपये में टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15422 रुपये का अनुदान दे रही है। यह

0: सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: इसके अलावा मुख्यमंत्री आज ही पर्यटन नीति के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में एम्यूजमेंट पार्क परियोजना और मुख्यमंत्री होम स्टे नीति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। श्री चौधरी बोधगया में 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विश्व स्तरीय ध्यान और अनुभव केंद्र का शिलान्यास और 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी परिसर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। इससे प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य भी जल्द प्रारंभ होगा। वहीं पटना मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट रह जाएगा। साथ ही हल्दिया रक्सौल हाईवे के निर्माण से मुजफ्फरपुर से मात्र 6 घंटे में कोलकाता पहुंचा जा सकेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती को लेकर छूट दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कम वर्षा वाले जिलों में पूर्व में घोषित कृषि चरम मौसम लीन पीरियड की तिथियों में बदलाव किया गया है। कम वर्षा और अल नीनो के गंभीर प्रभाव को देखते हुए प्रभावित जिलों में 10 जुलाई से 19 जुलाई तक वीबीजी रामजी योजना के तहत काम कराया जा सकेगा। संशोधन के बाद शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा। वहीं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और गया में ये पीरियड 9 अगस्त तक माना जाएगा। प्रदेश के किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। इससे पहले किसानों को प्रत्येक 3 माह पर बिजली बिल का भुगतान करना होता था। बिजली कंपनियों की अपील पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 3 महीने के बदले प्रत्येक महीने बिजली बिल भुगतान करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इस पहल से लगभग 8 लाख किसान लाभान्वित होंगे जिन्हें 3 महीने का बिल एक साथ भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जिलावार समीक्षा का दूसरा चरण आज से पटना से शुरू हो रहा है। इस समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान राजस्व संबंधी अहम मामलों और जन शिकायतों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिताएं 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए होंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए आप अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का

अनुसरण करके आप सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी कड़ी के लिए सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है।
1: दिनांक 13 जुलाई राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मुंगेर एवं सहरसा जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब तक पूरे प्रदेश में 155.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया जिले के विभिन्न भागों में देर रात से आज सुबह तक तेज बारिश हुई है। बारिश से सदर अस्पताल परिसर, कचहरी, बस स्टैंड में जल जमाव हो गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। इधर पटना और मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मोकामा घाट और ओटा में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से तेजी से कटाव भी हो रहा है। जल संसाधन विभाग इन क्षेत्रों में कटाव को देखते हुए विशेष निगरानी बरत रहा है। वहीं मुंगेर में भी प्रत्येक घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी सहित सभी स्टेशनों के सर्वर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सिस्टम को यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क से अपग्रेड किया जाएगा। इस नेटवर्क के उपयोग से यात्री टिकट 5 सेकंड में बुक कर सकेंगे। वहीं IRCTC और PRS काउंटर से भी बुकिंग कम से कम समय में हो सकेगी। ये सुविधा पूर्व मध्य रेलवे के सभी 5 रेल मंडलों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 जुलाई को भागलपुर के गौराडी के कासिल में नवस्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री चौधरी प्रदेश के सभी नव स्थापित डिग्री कॉलेजों के सत्रारंभ की भी शुरुआत करेंगे। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर AK रॉय, पूर्व कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया।

0: इस मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक सौराठ सभा का कल समापन हो गया। सभा के अंतिम दिन पंजीकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न पंजीकारों के पास 30 से 100 सिद्धांत यानी वैवाहिक सहमति संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की सभा में पंजी प्रथा के प्रति समाज में नई जागरूकता देखने को मिली है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के सेतु मिश्रा ने चीन में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही वे एशियाई एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सेतु मिश्रा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रविंद्रन शंकरन ने बताया कि सेतु ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक तथा पुरुष 4x400 मीटर रिले में रजत पदक दिलाने में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेतु मिश्रा की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, नई सरकार के 100वें दिन दीदियों को दूसरी किस्त, छूटी हुई जीविका दीदियों को भी पहली किस्त मिलेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के 16 जिलों में 34 पर्यटन स्थल चयनित। महिला और युवा उद्यमियों को 25,000 रुपए अतिरिक्त सहायता देगी राज्य सरकार। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार में पत्थर और गिट्टी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री ने 6 जिलों में 44 नई खाद्यान्नों को दी हरी झंडी। प्रभात खबर ने लिखा है, वीबीजी रामजी योजना के तहत काम कराने की अवधि बदली, 20 से 17 जिलों में काम रुकेगा, धान बुआई की अवधि में हुआ बदलाव। आज अखबार ने फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर पर लिखा है, अर्जेंटीना 6ठी बार सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती के लिए मिलेगी छूट। और मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 8 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें एक बार फिर से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 9:10 पर। 10:00 रसमंजरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 प्रस्तुत करेंगे अंग्रेजी वार्ता। 10:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ गीत अनुपमा शरण की आवाज़ में। 12:00 प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत और 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफ़र।

साधिकारिक सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर।

ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर, और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं शाम 7 बजे।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे सीताराम सिंह से कुछ भजन। रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर नीरा चौधरी से शास्त्रीय गायन। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: मिर्ज़ा ग़ालिब का कलाम आप समाप्त फरमा रहे थे सामीन जगजीत सिंह की आवाज़ में। यकीनन जो वाक़यात और हादसात होते हैं उन पे इंसान की दस्तरस नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान इस बात को कबूल करने के लिए ही तैयार हो सकता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें वो अपनी इस आँखों से देखे और सिर्फ़ उसके असरात को महसूस करे और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह उतारे कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की जानिब लेकर चले। यकीनन कामयाबी के ज़रूरत जो है वो ज़िंदगी गुजारने वाले उन तमाम लोगों को है, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है और इसमें अपने आप को अपने काम के ज़रिए नुमाया करने की जो एक कोशिश है वो हर पे हर दम इंसान के साथ लगी होती है। ऐसे ही ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमारे हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन बहुत तरह की स्कीम्स भी चलाई जाती हैं जिनसे इस्तफादा हासिल करके अपने ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हम इस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि दुनिया जो है बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के इस मुकाम पे है जहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे दस्तरस में आ गई हैं और उन तमाम के लिए अपने आप को मुलविस करते हुए हमें उसमें अपने अपने काविशों को करना ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें जहन भी खुला रखना होगा और अपने अमल को भी करते रहना होगा। नई मंजिल स्कीम जो हुकूमत हिंद के वजारत अक़लियती अमूर की जानिब से चलाई जाती है उसका जो मकसद है वो अक़लियती नौजवानों को स्कूल छोड़ दिया है जिनके पढ़ाई में बहुत तरह की परेशानी आ गई है लेकिन उन्हें हुनर के ज़रिए से इस तरह से बेहतर बनाया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एक मेयार के साथ गुजार सकें। इसके तहत नौजवानों को 8वीं या 10वीं जमात के सर्टिफिकेट दिलवाने के साथ साथ रोज़गार के मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं। उम्र की हद इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की 17 से 35 साल के दरमियान में है और ख़वातीन का हिस्सा है। इस स्कीम में कम से कम 30% नशिस्त है। यकीनन नई मंजिल स्कीम्स जिसके ज़रिए से पढ़ाई छोड़ चुके वो नौजवान अपने हुनर के ज़रिए से अपने आप को निखार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की काविश कर सकते हैं। इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए इस जानिब गामजन हो तो बेहतर है। आइए सामीन इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम आपको इस अगली पेशकश की जानिब मुतवज्जे कराना चाहते हैं जिसका जिक्र हमने किया था। ये महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं। इसके शोर का एक बार फिर से बताएं कि मोहम्मद नसीम अख्तर, शहाबुद्दीन और शब्बीर अहमद हैं जबकि फ़राइज़ निज़ामत मोहम्मद नसीम अख्तर के ज़िम्मे है। लीजिए आपके समातों के हवाले।
1: सामईन, आज के स्टूडियो मुशायरा में मेरे साथ मौजूद हैं सासाराम से जनाब शब्बीर अहमद साहब, और दूसरे शायर मेरे साथ हैं जनाब शहाबुद्दीन साहब जो गया से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं मोहम्मद नसीम अख्तर आप तमाम सुनने वालों का खैर मकदम करता हूं। और सबसे पहले मैं दावत सुखन दे रहा हूं शब्बीर अहमद साहब को कि वे अपना कलाम पेश करें।
2: गज़ल का मतलब समाप्त कीजिए।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह। अजीब शख्स हूँ पत्थर,
2: बहुत खूब
3: जात रखता हूँ, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब।
0: फिर एक बार प्राजा मतलब यार, वाह वाह वाह।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा।
0: अजीब शख्स हूँ,
2: पत्थर
1: की जात
2: पत्थर की
1: रखता
2: जात रखता हूँ। वाह वाह वाह वाह,
1: क्या बात, खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: वाह वाह,
1: क्या बात है,
2: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: अजीब,
1: क्या बात
0: है। और शेर सुनिए,
1: एनायत।
0: यूं हंस के मिलना सभी से, हमारी फितरत।
1: माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे।
0: यूं हंस के मिलना सभी से,
1: हमारी फितरत है,
0: हमारी फितरत है,
1: क्या बात है,
0: बहुत
1: अच्छे।

0: क्या
1: अच्छा
0: बात
1: है, अच्छा है, अच्छा ही है, वाह वाह वाह,
2: बहुत नवाजिश।
0: बहुत खूब।
2: और ये शेर भी समाप्त कर लिया
1: इनायत
2: जाए, शायद
1: इनायत
0: इनायत
1: पसंद आए।
0: इनायत इनायत
2: तेरे

0: तेरे फराक ने
1: कर लिया है मगर
0: कर लिया है मगर
2: वाह वाह वाह
0: तेरे

0: Vá.
1: Cheiro-se-me-ia.
0: E de chato.

0: वो जिसको देख के सन्नाटे कांप जाते हैं। वाह वाह वाह वाह
1: वाह।
2: वो जिसे को देख के
1: सन्नाटे कांप जाते
2: कांप जाते
0: अच्छा है।

0: अच्छा
1: क्या बात है, क्या
0: बहुत खूब।
1: बात है भाई।
0: अजीब शख्स, और आखिरी शेर
1: इनायत इनायत
0: नजर कर रहा हूँ
1: इनायत
0: तुम्हारे
1: इनायत
0: लिए।
1: इनायत।

0: नदी के जिस्म को छूलूं तो आब हो जाए।
1: वाह
0: मैं
1: बहुत अच्छे।
0: सहरा हो के समुंदर की जात
2: जात रखता।
1: क्या बात है,
2: वाह
1: क्या
2: वाह
1: बात है।
2: वाह वाह
1: मैं सहरा हो के समंदर की जात
0: मैं
1: रखता।

0: क्या बात है,
1: अच्छा है
0: वाह
1: भाई,
0: वाह
1: अच्छा
0: वाह
1: है,
0: वाह,
1: बहुत
0: अजीब
1: अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या बात।
0: शख्स और मक्ता समाप्त कर लिया
1: मेरे साथ
0: जाए।
1: ना इतना है
0: जी।

0: बहुत नवाज
1: बहुत
0: जी।
1: खूब।
0: दूसरी गजल का मतलब समाप्त कर लिया जी।
1: इरशाद इनायत।
0: ये कौन याद आता है शामो सहर
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: मुझे,
1: ये कौन याद
0: अच्छा है
1: आता
0: भाई।
1: है शामो शहर
0: ये
1: में।
0: कौन
1: शामो सहर मुझे,
0: शामो सहर
1: मुझे वाह।
0: क्या फिर तलाश करती है कोई नजर मुझे।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत
0: वाह
1: खूब, क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है।
0: वाह।
1: मुकर्रर
0: फिर
1: मुकर्रर।
0: ये
1: वाह
0: कौन
1: श्यामो सहर मुझे,
0: शामो सहर मुझे,
1: अच्छा है यार, वाह
0: क्या
1: वाह
0: फिर तलाश करती है
1: वाह
0: कोई नजर
1: वाह, बहुत
0: मुझे,
1: खूब
0: वाह
1: बहुत
0: बहुत
1: खूब
0: अच्छे,
1: बहुत खूब वाह वाह।
0: क्या फिर तलाश करती है
1: कोई
0: कोई
1: नजर मुझे,
0: नजर मुझे।
1: बहुत खूब, क्या बात है, क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह।
1: है।
0: शेर सुनिए
1: इनायत इनायत।
0: इनायत। जब से तेरे ख्याल का
1: जब से तेरे ख्याल का,
0: मौसम बिछड़ गया,
1: जब से तेरे ख्याल का मौसम बिछड़ गया,
0: जब
1: वाह
0: से

0: 4 हजार
1: वीरानी सी लगे हैं सभी रह गुजर
2: वाह वाह वाह वाह
0: 4
2: वाह
0: हजार
2: वाह
3: वाह बहुत
2: वीरानी से
3: अच्छी
2: लगे हैं, बहुत अच्छी।
1: वीरानी सी लगे
3: सभी रह गुजर
2: सभी
3: मुझे,
2: रह गुजर मुझे, वाह वाह वाह
3: सभी रह गुजर मुझे,
0: वाह
3: वाह क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: कौन याद आता है
3: शामो सहर मुझे,
1: शामो सहर मुझे। और शेर सुनिए
0: इरशाद,
1: फिर आके मेरी फिक्र की,
0: फिर आके मेरे फिक्र की
1: जुल्फ।

0: वाह
1: फिर आके मेरी फिक्र
2: जुल्फें सवार दे
1: बहुत खूब बहुत खूब
0: वाह।
1: सब लोग कह रहे हैं यहाँ बेहुनर मुझे ये कौन मेरी जात के अंदर उतर गया।
0: क्या बात है,
3: ये कौन मेरी जात के अंदर उतर गया,
1: ये कौन

0: वाह वाह वाह
1: वाह,
0: वाह,
1: मुद्दसी हो गई नहीं
0: वाह वाह,
1: अपनी खबर
0: क्या बात है,
1: मुझे,
0: बहुत खूब, बहुत
1: क्या
0: खूब,
1: बात है,
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब,
1: अच्छी बात,
0: क्या
1: फिर
0: क्या बात है,
1: तलाश करती है
2: कोई नजर मुझे,
1: कोई नजर,
0: बहुत खूब,
2: और
0: क्या
2: बहुत
0: बात
2: खूब,
0: है,
1: मुक्ता समाप्त कर लीजिए
0: इरशाद इरशाद।
1: शब्बी।

0: लफ्जों का आज कहते हैं सब
1: वाह
0: जादूगर।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: है भाई,
1: वाह
0: क्या बात है, बहुत
1: वाह
0: अच्छे
1: वाह,
0: लफ्जों
1: का आज कहते हैं
0: काज कहे
1: सब
0: सब
1: जादूगर
0: जादूगर
1: मुझे। आय हाय वाह वाह वाह वाह
0: सब जादूगर मुझे,
1: वाह वाह,
0: क्या
1: बहुत
0: फिर
1: खूब
0: तलाश
1: बहुत खूब
0: करती है कोई नजर मुझे,
1: बहुत खूब बहुत खूब। शब्बीर अहमद साहब,
2: बहुत नवाजिश, बहुत
1: बहुत।
2: शुक्रिया।
1: अभी हम लोग बहुत ही उम्दा कलाम सुन रहे थे शब्बीर अहमद साहब से, तरन्नुम में पेश कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत गजल। और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब शहाबुद्दीन साहब को। राह चलते वो रश्के कमर मिल गया, राह चलते वो रश्के कमर मिल गया, मैं अकेला था एक हमसफर मिल गया। आइए सुनते हैं जनाब शहाबुद्दीन साहब को।
0: गजल का मतलब हाजिर कर
2: शो
0: रहा हूँ आप सबके समातों के हवाले, तवज्जो चाहूंगा।
1: इरशाद।
0: चलने वाले ही बताएंगे सफर की
2: अच्छा यार, वाह वाह वाह
1: कीमत,
2: वाह वाह वाह
0: चलने
2: वाह वाह वाह वाह
0: वाले ही बताएंगे सफर की कीमत,
2: क्या बात।
0: धूप में जल के ही समझेंगे शजर की
1: क्या कहें, वाह वाह वाह
0: कीमत,
2: वाह वाह वाह, धूप में जल के ही
0: धूप
2: समझेंगे
0: में
2: शजर की
0: जल के
2: कीमत,
0: ही समझेंगे शजर
2: वाह वाह,
0: की
2: सच्चा खूब अच्छा है
1: बहुत
2: भाई, वाह
1: खूब
2: वाह वाह
1: बहुत
2: वाह
1: खूब।
2: वाह वाह
0: और शेर
2: वाह
0: हाजिर कर रहा
2: वाह,
0: हूँ, तवज्जो चाहूंगा। जिसने ताउम्र मुसर्रत से ताल्लुक रखा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: उसको मालूम कहाँ दर्द जिगर
0: की कीमत। बहुत खूब बहुत खूब,
2: क्या कहने जनाब।
1: और ये शेर देखेंगे बतौर खास है
0: इनायत हो
1: कि कत्ल हो कर भी मैं कातिल को दुआएं दूंगा।
0: वाह वाह वाह,
1: कत्ल हो कर भी मैं कातिल को दुआएं दूंगा, उसकी हसरत ने बढ़ा दी मेरे सर की कीमत।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: उसकी हसरत ने बढ़ा दी मेरे सर की कीमत।
0: बहुत खूब बहुत वाह वाह वाह वाह,
1: शेर देखेंगे कि जब कोई लिखेगा अफकारे हसी के किस्से।
0: वाह वाह,
1: जब कोई

0: तब समझ पाएंगे सब इल्म हुनर
1: वाह, तब समझ पाएंगे सब इल्म
0: कीमत,
1: हुनर
0: तब
1: की कीमत।
0: समझ
1: वाह वाह
0: पाएंगे
1: वाह वाह
0: सब
1: वाह, बहुत खूब
0: इल्म हुनर
1: बहुत
0: की
1: खूब बहुत खूब,
0: कीमत।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ
1: इशात इनायत हो।
0: शब की।

0: शहर की
1: वाह वाह वाह
0: कीमत,
1: वाह वाह वाह वाह
0: वरना क्या होती मेरे
1: वाह वाह
0: यार
1: वाह वाह वाह
0: शहर
1: मेरे
0: की
1: मुख्तार फिर भी हो जाए। वाह वाह
0: कीमत।
1: वाह वाह वाह वाह वाह

0: बहुत
1: कीमत
0: हो, बहुत
1: वरना क्या होती मेरे यार शहर की कीमत। गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ।
0: इरशाद।
1: हर एक फिरके के सर चढ़ कर ये जादू बोलता है।
0: हाँ हाँ
1: हर

0: भी उर्दू बोलता है, हमारे मुल्क में जरा भी उर्दू
1: बोलता है।
0: हर एक फिरके के सर चढ़कर ये जादू बोलता है, हमारे मुल्क में जरा भी उर्दू बोलता है। और ये शेर देखेंगे बतौर खास, न करना गुफ्तगु से जिसे आदाब ना मालूम, न

0: वाह
1: है। और आखिरी शेर देखेंगे
0: इरशाद
1: कि हर एक चेहरा है अफसुरदा, हर एक जानिबू है खामोशी।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: हर एक चेहरा है अफसुरदा, हर एक जानिबू

0: वाह
1: हुआ है क्या हमारे शहर में हूँ बोलता है। मक्ता
0: इनायत,
1: चलो एहसास चलते हैं जहाँ पे हो सुकून हासिल।
0: वाह वाह वाह, क्या बात।
1: चल

0: अभी बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे शहाबुद्दीन साहब कि हर एक फ़िक़े के सर चढ़ के ये जादू बोलता है। बहुत ही उम्दा कलाम पेश कर रहे थे और अब मैं अपना कुछ कलाम पेश करने जा रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि कुछ तो मेरा भी ध्यान रख लेना, इस वसीयत का मान रख लेना।
1: वाह क्या
0: कुछ
1: बात,
0: तो मेरा भी ध्यान रख लेना, इस वसीयत का मान रख लेना।
1: ठीक
0: हमने
1: है,
0: वादा किया मोहब्बत का,
1: वाह
0: हमने
1: वाह
0: वादा किया मोहब्बत
1: मोहब्बत का।
0: का, तुम हमारी जुबान रख लेना।
1: वाह क्या
0: हमने
1: बात
0: वादा
1: है,
0: किया मोहब्बत का,
1: वाह वाह
0: तुम
1: क्या
0: हमारी जुबान रख लेना। और
1: वाह,
0: शेर देखिए है कि सर
1: क्या खूब अच्छी
0: तुम्हारा,
1: तरकीब है यार,
0: सर
1: क्या बात है,
0: तुम्हारा,
1: मुकर्रर
0: अगर हमने
1: मुकर्रर
0: वादा किया मोहब्बत का, तुम हमारी जुबान रख लेना। और
1: वाह
0: शेर है कि
1: मैं
0: आसमां
1: सभी
0: है
1: को
0: सभी का दुनिया में,
1: वाह
0: आसमां है सभी
1: सभी
0: का
1: को
0: दुनिया में, तुम परों में उड़ान रख
1: क्या
0: लेना।
1: बात है, बहुत अच्छा,
0: आसमां
1: वाह
0: है सभी का दुनिया में,
1: अच्छा
0: तुम
1: है भाई,
0: परों
1: वाह
0: में
1: वाह
0: उड़ान रख लेना।
1: क्या
0: और
1: बात है,
0: आखिरी शेर देखिएगा कि जब भी मेहमान घर पर आए तो,
1: जब भी
0: जब भी
1: मेहमान
0: मेहमान घर
1: घर
0: में
1: पे
0: आए
1: आए
0: तो
1: तो
0: साफ सुथरा मकान
1: मकान
0: रख
1: रख लेना,
0: लेना।
1: बहुत खूब,
0: क्या बात
1: जब
0: है,
1: भी वाह
0: मेहमान घर में
1: अच्छा
0: आए
1: है भाई,
0: तो
1: वाह वाह
0: साफ सुथरा
1: मकान
0: मकान
1: रख
0: रख
1: लेना,
0: लेना।
1: अच्छा है,
0: कुछ तो मेरा
1: क्या
0: भी
1: क्या,
0: ध्यान रख लेना,
1: वाह
0: इस
1: खूब,
0: वसीयत का मान रख लेना। और एक और गजल पेश खिदमत है कि
1: अच्छा
0: उस पेड़ की जो छाँव इधर आए तो अच्छा,
1: वाह,
0: उस पेड़ की जो छाँव
1: इधर
0: इधर
1: आए तो
0: आए तो
1: अच्छा,
0: अच्छा, सूरज की अगर धूप बिखर जाए तो अच्छा।
1: क्या
0: सूरज की अगर धूप बिखर जाए तो अच्छा। ये उम्र हमेशा ही गरीबी में कटी है,
1: वाह,
0: ये उम्र हमेशा
1: हमेशा
0: ही
1: ही
0: गरीबी में
1: गरीबी में
0: कटी
1: कटी
0: है,
1: है,
0: बाकी जो मेरे हक में गुजर जाए तो
1: क्या
0: अच्छा।
1: कहने साहब, वाह वाह वाह वाह
0: ये उम्र हमेशा ही गरीबी में कटी है,
1: वाह,
0: बाकी जो मेरे हक में
1: अच्छा है,
0: गुजर जाए तो अच्छा। हर
1: वाह
0: चंद कि इंसान खताओं का है पुतला,
1: वाह क्या
0: कुछ
1: बात,
0: नेकियां इंसान सी कर जाए तो
1: हाय हाय
0: अच्छा।
1: हाय
0: कुछ नेकियां इंसान सी कर जाए तो अच्छा। हर
1: वाह,
0: चंद की इंसान खताओं का है पुतला, कुछ
1: क्या
0: नेकियां इंसान सी कर जाए तो अच्छा।
1: वाह
0: और आखिरी
1: वाह
0: शेर है कि दौलत के भरोसे पे नापेंगे समंदर को,
1: वाह,
0: दौलत के भरोसे पे नापेंगे समंदर को,
1: क्या
0: ये सर से नशा उनके उतर जाए तो अच्छा।
1: बात,
0: ये सर से नशा उनके उतर जाए तो अच्छा।
1: क्या
0: अब मक्ता
1: बात,
0: पेश खिदमत है कि अख्तर का हुआ खून उन्हें कौन बताए,
1: वाह
0: अख्तर का हुआ खून
1: उन्हें
0: उन्हें कौन
1: कौन
0: बताए,
1: बताए,
0: इल्जाम मगर गैर के सर
1: उतर
0: जाए
1: जाए
0: तो
1: तो अच्छा,
0: अच्छा।
1: बहुत खूब,
0: इल्जाम मगर गैर के सर जाए तो अच्छा,
1: क्या
0: उस
1: कहने,
0: पेड़ की जो छाँव इधर आए तो अच्छा,
1: वाह वाह,
0: सूरज की अगर धूप बिखर जाए तो अच्छा। एक और छोटी सी गजल पेश खिदमत है
1: बताओ,
0: कि फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया,
1: फूल की
0: फूल
1: खुशबुओं
0: की
1: को
0: खुशबुओं को
1: चुरा
0: चुरा ले
1: लिया,
0: गया,
1: क्या
0: कौन था जो मेरी ये कबा ले गया।
1: बात,
0: फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, कौन
1: वाह
0: था जो मेरी ये कबा ले गया। वो
1: वाह
0: गया तोड़कर दिल मेरा तो मगर,
1: वाह,
0: वो
1: वो
0: गया तोड़कर दिल मेरा
1: मेरा
0: तो
1: तो
0: मगर,
1: मगर,
0: जाते जाते वो अपनी वफा ले गया,
1: क्या भाई,
0: जाते जाते
1: क्या
0: वो
1: तेवर है
0: अपनी
1: साहब,
0: वफा ले गया।
1: वाह,
0: आसमां पर निशाना लगाया है कौन, आसमां
1: आसमां
0: पर
1: पर
0: निशाना
1: लगाया,
0: लगाया है कौन,
1: क्या बात,
0: जो हंसी बादलों की घटा ले गया,
1: हाय हाय,
0: जो हंसी बादलों की घटा ले गया। और आखिरी शेर पे खिदमत
1: वाह,
0: है कि दोस्त ऐसा भी निकला अदालत में भी,
1: क्या बात,
0: दोस्त ऐसा भी निकला
1: अदालत में
0: अदालत में
1: भी,
0: भी, मेरे हिस्से की हर एक सजा ले गया।
1: क्या बात है,
0: दोस्त ऐसा भी
1: वाह,
0: निकला
1: अच्छा शेर है,
0: अदालत
1: ये
0: में
1: बड़े
0: भी,
1: जिगर की बात
0: मेरे
1: है, बहुत
0: हिस्से की
1: अच्छा
0: हर
1: शेर
0: एक
1: है, हाँ सर,
0: सजा ले गया,
1: अच्छा शेर है,
0: फूल की
1: फिर से,
0: खुशबुओं को चुरा ले गया,
1: क्या बात है,
0: कौन था जो
1: मेरी
0: मेरी
1: खबा लेके,
0: कबा ले
1: वाह
0: गया।
1: क्या,
0: आज के इस मुशायरे में मेरे साथ थे जनाब शब्बीर अहमद साहब और जनाब शहाबुद्दीन साहब। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मोहम्मद वसीम अख्तर आपसे इजाजत चाहता हूँ।
2: सामीन महफिल सुफन के तहत ये स्टूडियो मुशायरा भी आप समाअत फरमा रहे थे, जिसमें शामिल शोरा थे शहाबुद्दीन, नसीम अख्तर और शब्बीर अहमद। फ़राइज़ निज़ामत मोहम्मद नसीम अख्तर के ज़िम्मे थी।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब के कलाम को अभी आपने समाप्त किया सामीन, और अब हम अगली गज़ल जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में। लीजिए आपकी समाप्त।

सामिन फना निज़ामी का ये कलाम जगजीत और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने समाप्त किया। और अब अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में है। लीजिए आपकी समाप्त।

कलाम आप समाप्त कर रहे थे भूपेंद्र की आवाज में, और इसी के साथ हमारा सफर यहीं तमाम हुआ। कल फिर हमारी मुलाकात होगी, इसी वादे के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुदा।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं रसमंजरी। माई नेम इज खान, इस फिल्म के गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। निरंजन अय्यंगर के बोल और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।